मानस खाने करे निवास चुरी बगैंतन गलता किन कर भ्रमण पूरे ना ओ न पिया भी ओ सात कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कुड़ बोल करे आहा सरम तरम का डेरा दू नानक कुड़ रहया भरपूर मथे टिक्का तेड़ तोती का खाई हाथ चुरी जगत कसा नील वस्त्र पैर होए परवान मिले स्थान ले पूजे प्रा अपख्या का कुट्टा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़े आग मत पिटे वे मत पिटे यो अन असाडा पिटे तन फिटे फेट करें मन जुटे चुली परे कहो नानक

बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै देहो दर्श मन चाओ भगत ए मन ठहरावै बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म हर चरण कमल की टेक सतगुर दिखती सुस कै बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिस कै बलराम जियो।

सब जग जिन्हें उपाया पाई, करण कारण समरथ जियो पिंड जिन सजया पाई, देकर अपनी वथ।

सर्व रहया परपूर जिन्ना प्रीत न लगिया पाई से नित नित मर दे चूर अंचल लाए तराया पाई पौ जल दुख संसार कर कृपा नदर निहालिया पाई कीतों ने अंग अपार

गास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमारी रहरास रहाओ हर जन के वड़ भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल

जी से जान जोग मह सुख वासी से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी।

सब तेरी तू सब नी ध्याया, जिस नौ कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने, हर गुण सद ही आखे बखाणे।

प्यासा, तुम है शाढ़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहाऊ सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चौन चौन सत्रो हमारे।

उबार असेख्य संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलीश करो रण काता जे अस तुजताव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

वाहेगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार मस्तक रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चन रखिया जी सर्व रखिया चल है भगत बशर अनाथ नाथे सर नानक गुलाबल महला पंजवा ताकि बौन लगई पार दिन सरनाई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगै न पाई गुरपूरा भेटिया जिन बंत बनाई राम नाम अवसर दिया एकता लिवलाई रहाउ राख लिए दिन रखन हार सब याद मिटाई बहु नान कृपा पई प्रभु के सहाई सोहेला रा गौरी महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीर्ता किया करते का होए विचारो हित कर गावो सोहेला सिवर हो सिरज महारो तुम गावो मेरे निरभाव का सोहेला हो बारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीअड़े समाजन देखेगा देव नार तेरे दाने कीमत ना पवै सदाते कवन सुमार संबुत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजना सीसड़िया जहो वै सहब सुमेल कर कर हो पहुंचा सदड़े नित पवाना सदन हारै सिमरिया नानक से दे आवन रागासा महला पहला।

मोहे इक इक दोए ठाए न जानेओ सुपन इक प्रतख इक इक कसमे लीनो तीस इक पर